सजो साधु संग सज मिलियो पार ब्राह्मण संग सज गृह में सहज उदासी सज दुबदा तन की नासी जग सहज मन

विस्तारा। रे मन मेरे तुहार सुजोर, काज तुहार नाही होर रहा, बड़े बड़े जो दुनियादार काहू काज नाही गावार। हर का दास है नीज कुल सुन है तिसके संग, खिन मैं उधर है कोट मजन जाके सुन नाम, कोट पूजा जाके है त्यार कोट।

राम का रंग जग काम उतरे सब भूख जग कामना जो है दूत जग काम तेरा बड़ गमर जग काम होवे तू अमर जग चक्र को नहीं डान जग चक्र को नहीं बान जग दफ्तर पूछे न लेखा जग दफ्तर पूछे न लेखा ताकि चक्री करो बसेखा जग उन नाही कहू बात एक आपन के पात जाके दृढ़ हो सदा निहाल मन मेरे करता की काल ना को चतर ना ही को मूड़ा ना को हीर ना ही को सूरा जित गुलाया तत ही लागा सो सिर्फ नानक जिस पाका गोड़ी महला पंजवा बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी तो जीव साकत नाम बिसारी कनिमक जो सिमरन मह जिया

मेरा गुर सम्राट था गुड़ माला पंजवा मिल मेरे गोबिंद अपना नाम देहो ना बिना त्रैव त्रैव्य सने हो रहा नाम बिना जो पहरे काए जो कुकर जूठन में पाए नाम बिना जे ता व्यवहार जो मृतक मिथ्या सिगार नाम विसार करे रस भोग सुख सपने नहीं तन में रोग।

बहुत विस्तारा। नाम बिना झूठे पासारा, हर का नाम सोई जन ले, कर कृपा नानक जस दे, कर कृपा नानक जस दे, गुड़ी माला बनवा आद मद जो अंत निभाह, सो सजन मेरा मन चाहे, हर की प्रीत सदा संग चाल, दयाल पुरख पूर्ण व्रत पाल, रहा बिनसत ना छोड़ न जाए, जय पेका तेरे समाए। सुंदर सुगड़ चतुर जी दाता, भाई पूत पिता प्रभ माता, जीवन प्राण आधार मेरी रास, प्रीत लाई कर हृदय निवास, माया सिलक काटे गोपाल, कर अपना लीनो दर निहाल, सिमर सिमर काटे सब रोग, चरण निदान सर्व सुख भोग, पूर्ण पुरख नवतन नित पाला, हर अंतर बार संग रखवाला, कहो नानक हर हर पद चीन, सर्बस नाम भगत को दीन, राग कोड़ी माज महला पंजवा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद, खोजत फिरे संगंत नहीं पारिया, सही होए भगत जना कृपारिया, हो बारिया हो बारिया, राव सुन सुन पंत डराओ बहुत पहारिया, मैं तक योड़ संता ले हो बारिया, मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया, गुर निम निम लागो पाए देहो दिखारिया, मैं किए मित्र नेक एक बलहारिया, सब गुण के सही नाहे हर पूर भंडारिया, चौद जपिए ना सूख सवारिया, मैं आही ओढ़ तुहार, नानक बलहारिया, गुर काढ़ो पुजा पसार मोह कु।

जो मिले ते वह मिलाइए, आपे मिल ले सुखदाता आप मिलिया घर आए, नानक कामण सदा सुहागण ना फिर मरे ना जाए। गौड़ी महला तीजा, कम हर रस विधि जियो, हर के सहज सुभाए, मन मोहन मोह लिया जियो, दुबद सहज समाए, दुबद सह समाए, कम मर पाए, गुरमति रंग लाए, ए शरीर कूड़ कुसत भरिया, गल ताई पाप कमाए, गुरमुख

का शब्द सुहावे अंदन हर गुण गाए आप कराए करे आप जीव आपे शब्द सुहारे आपे सतगुरु आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे जुग जुग भगत प्यारे हरे आप सुहारे आपे भगती लाए आपे दे आपे दाना आपे बिना आपे सेव कराए।

लिया जी ओ देख चलत तुम्हारे, चलता तुम्हारे देख मोहि उदास तान, क्यों तीरे गुणवंत ना दयाल बाल सर्वगुण पर पूरे।

मनोह चिंदिया पाया दिन रलिया कर कामण मिट सगल दे बनवंत नानक कंत मिलया लोड़ते हम जैसा मेरे मन अनंत पया जीव बजी वादा आई कर ला लिया आया प्यारा सब तिखा बुझाई मिलया तो लाल गोपाल ठाकर सखी मंगल गाया सब मीत बंदप हर खो पजया दूत थाओ गवाया।

ठाकुर जिन्हें सब कल धारिया तुद बचन गुर कै बस किया आदि पुरख बनवारिया तू आप चले आप रहे आप सब कल धारिया।

में गड़गड़ प्राण अधारी प्राण मन तन जी ताब्यांदा गम पारो शरण जोग समरत मोहन सर्वदोख बिदारो रोग सोग सब दुख बिन से जब नाम रारी बिनवंत नानक करो कृपा समरत सब गलता।

कालकंटक लोभ मोहन सहज जग प्रभव सुप्रसन्न देव सफल सेवा भई पूर्ण काला बनवंत नानक इच पुन जपत दीन दयाला गौड़ी महला पंजवा।

श्लोक सहसा भगवंत सहसा संत है हर रास नानक सच सुच पाइए ते संतन गए पास पौड़ी सहसा सत सत सत सौ सत पुरख ते भिन्न ना को सौ सरन पर जेह पायं सिमर सिमर गुण गाय सुनाय संसय भरम नहीं कस ब्यापत

बिन बूझे पाच ढोर नानक गुरमुख सोभ जय जाग भाग मथोर पौड़ी जा जुग में एक गवाया जन्म दा मोहनी मोहयो माया गर्भकुंड मह और दह ताप करते सा सा

पौड़ी। रर रंग होया माने अपना हर हर नाम जपो जप रसना रे रे धरगे कहे न को। आओ बैठ साथ आदर सब, आओ बैठ आदर सब, दुआ महली पावे तू बस जन्म मरना न होए विनाशा। मस्त कर्म है लिख्यो तोर जय कह हार संप नानक घर ताक सलोक। लाल झूठ विकार मोह व्याप्यो मूड़ा अंध, लाग पर दुर्गंध सोना।

थी जो तू दे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी ध्याया जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुगवाया तू आप भी छोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई ना है जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनों तू जाना है सोई जन जाण हर गुण सद ही आख बखाण जिन हर सेविया

को हमारी सगल प्रजाजन आप सवारी सेवकन को सेवकन सुख दियो सत्रन को बल मो बद कियो घट घट गए अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्तूला सपर कृपा दुष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछन्न कट कट के बट बट की जन जब दुकर्क करा कर तारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब आकर्ख कर तो हो कब हो तो मैं मिलत देहे तर सब हूं जेते बदन सिर सब तार आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा

हमरे सब काज, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा, दा जान कर कृपा करहो मोहे, हार परामयान द्वार तोहे, अपना जान करो व्रत पारा, तुम साहिब में किंकर थारा, दा जान दा हाथ उबारो, हमरे सब हरियन संगारो, प्रथम तरो भगवत को ध्याना, बहर करो कविता विदनाना, कृष्ण जथा मच्छरतरो चारो, चू कोई कबले हो सुधारो।

प्रभु को भयो जन्म धरा जग आए, अब मैं कथा संक्षेप ते सब गुं कहत सुनाए। कब बाज दोहरा ठाट भयो मैं जोर कर, भजन गां शरण आए, पंथ चलाए तब जगत मैं, जब तुम करो सहाय। दोहरा जे जे तुमरे ध्यान कहो, नितुड़ आए हैं संत, अंत लहेंगे मुक्त फल, पावेंगे भगवंत। दोहरा कालपुर की देह मो कोटक विशन महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा गिते राव सस गुरु रजले। दोहरा

0: इतनी सेवा प्रवान करने जी कीर्तन करते हैं। प्रभु की माफी बख्शना भाई जसविंदर सिंह जी लुधियाने वाले जड़ी बार कथा राही आप जी ने जोड़नगे। अगला प्रोग्राम सत्कार जो भाई साहब जसविंदर सिंह जंडी जी आप जी ने सरवण करवाएंगे, उन्होंने पासों प्यार से सरवण करो जी।
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवादी हाँ सत्कार जो ज्ञानी गुरप्रीत सिंह जी मुख सेवादार गुरद्वारा साहब फ्रीमाउंट, ज्ञानी जगतार सिंह जी, ज्ञानी जुझार सिंह जी, जोरावर सिंह जी, जिन्होंने आप संगतान बड़ा रस भिन्ना कीर्तन सरवण कराया है, इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप संगतान के चरणों बेनती है कि कल 7 बजे उस महान योधे दी माता जी आप संगतां दे दर्शन करन आ रहे ने, जिस योधे ने जदों पंजाब दी धरती ते घरां चों चुक चुक के कालजां चों चुक चुक के बाहरों जिथे कोई हाथ गुरु दा प्यारा सिख आउंदा सी ते उन्हां सिंघां नूं पकड़ के झूठे मुकाबले बना के तशद्दद करके उन्हां नूं शहीद कीता जांदा सी, ते उस नूं डक्का लाउण वास्ते उस भाई दिलावर सिंह जी ने यह अपना मनुखी बंब बन के उस जालम नूं जो ये वर्तारा कर रहा सी बेंते जो बुचड़ नूं उसने अपना ह्यूमन बंब बन के उसनू तुर दी टिकट दिती थी, ते उस तो बाद कतलेआम जिहड़ा उहनू थोड़ी ठल पै गई सी, नहीं पता नहीं किन्ने क लखां मुंडे घरां चों चक चक के जिस हिसाब नाल उन्होंने पुलिस वालियां नू तरक्कियां होर ते खुले शरेआम उन्होंने बदमाशी कीती, तां सिख कौम नू जो सिख कौम दा कहाण कीता। वो माता उस योधे नूं जन्म देण वाली कल आप संगतां दे दर्शन करन वास्ते 7 बजे शाम नूं इत्थे पहुँच रही है। सो मैं बेनती करदा कि सारे आओ उस माता दे भी दर्शन करिए अते उस नूं पता लगे कि भाई साडी कौम साडे उन्हां योधियां दा सत्कार करदे होए उन्हां परिवारां दा भी सत्कार करदे आ जिन्होंने ये कौम प्रति अपनिया सेवावां निभाइया। सवाब मैं हुण ज़्यादा समा ना लवां, मैं बेनती करदा पंथ दे महान विद्वान सत्कार योग ज्ञानी जसविंदर सिंह जी लुधियाने वाले आप संगतां नूं गुरबाणी कथा विचार सरवण कराउण। आओ कथा सरवण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पात साही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय, अर्जन हर गोबिंद नाउ सिमरओ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई है, जिह जिथे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया, कर नाम निद आवे ताए, सब थाई होए सहाय, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी, सब थाई होए सहाय, दसा पातशाहियां दी जोत धन तहन, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ जी धार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा प्यारियां चौहान साहिब जादियां, चालियां मुक्तियां, हठियां जपियां तपियां, जिन नाम जपिया वंड के छकियां, देख चलाई तेग वाही, देख के अमृत कीता, तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिन्ना सिंह सिंघनियां ने धर्म हे सीह दिते, बंद बंद कटवाए, खोपरियां लुहाइया, चरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चरवाए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिखी सिदके सां सवासां संग निभाया, तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी का ध्यान तरके बोलना जी। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, चेतावै चेतावन का सदका सर्ब सुख होए, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रिया, देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी के बोल बाले बोलना जी।

बोलना जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लेई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्दन हर गोबिंद नाम सिमरऊ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिठे शब्द खजाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नाउ निधियावे ताए। सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दे हजूर अरदास बेनती आप जी ने कृपा रहमत कीती है। अमृत वेले तो सोहने तख्तां ते प्रकाश मनो के दर्शन दीदार बख्शे हन। आप जिया का कोटान कोट धनवा शुकराना है। इस वेले शाम दे दीवान की संपूर्णता परंत आप जिया के पावन स्वरूप के सुख आसन की सेवा हुई है। सोहिला साहब की बाणी पढ़ी गई है। बाणी पढ़द्या सेवा करद्या भुल जुग की खिमा बख्शना। आप जिया के भाणे विच दिहाड़ा सुखा नाल बतीत होया ही रहना। आप दे भाणे विच बतीत होवे। कृपा करो आप जी अपनिया सेजा ते विराजमान होवो। संगतां नूं खुशियां बख्शो। अमृत वेले दे जग ने दर्शन बख्श के निहाल करना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

छोड़ झूठ संग मचाए, जो छटना सो असर कर माने, जो होमन सो दूर पराने, छोड़ जाए तिसका शर्म कराए, संग सहाय तिस पर हराए, चंदन लेप उतारे धोए, गर्द प्रीत पसुन संग होए, अंधकूप में पतत बिकराल, नानक काढ़ लियो प्रभ दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोग बिचारा करे दिन रात, बाहर भेख अंतर मन माया, शब सनाहे गज करे छपाया, बाहर ज्ञान ध्यान शनान, अंतर व्यापे लोभ सुवान, अंतर अग्न बार तन स्वाहा, गल पाथन कैसे तरया था, जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक तेजन सह समात, सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गए लेह ओढ़ निभावे, कहा बुझारत बुझे ढूरा, निष्कहिए तो समझे पूरा, कहा बिजन पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुर भंग, कह पिंगल पर्वत पर पवन, नहीं हो तो वह उस गवन, करतार करुणा में दीन बेनती कराए, नानक तुमरी कृपा तराए।

उचेते ऊंचा भगवंत। सकल सामग्री तुम्हारा सूत्र तारी, तुम ते हुए सो आज्ञाकारी, तुम्हारी गत में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी।

मैं पत जाए अष्टपदी दस वसूले पाछे पावे एक बस्त कान भी खोट गवावे एक भी ना दे दस भी हर ले तो मोड़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर से हो ना।

जिसकी बस आज्ञा रखे प्रभु की आज्ञा मन माथे उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सरपर होवत जान अनेत बिरकी छाया सुरंग लाभे ओबन से मन पछतावे जो दिस सो चालन हार लपट लो अंधार बटाऊ से जो लावे ने ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानका बलाई लाई मिथ्या तन तन कुटम सबाया मिथ्या होमे ममता माया

जय प्रसाद आसव हास्त सवारी मंत प्रभ को कबहू नाम सारी जय प्रसाद बाग मिलख तना राख प्रो प्रभ बने मना जिन तेरी मन भनत बनाई उठत बैठ सा तिसे त्याई जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रखा है।

नानक जो पावक का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैला लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मनो प्रकाश जैसे तारु भरे आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतुर समान ब्रह्म ज्ञानी के नाय अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते उच्चा

ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का सकल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदा खेर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना, ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जान। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का

आत्महितावै जीवन मुक्त सौ कहावै तैसा हर्ग तैसा सोग सदा अनंत नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी सुमाटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो बरताए साई जुगत नानको पुर कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगरे ठाओ जित जित जित जित कर राख तैसा दिन नाओ आपे करण करा मन जो प्रभाव है सोई फन होग पसरिया।

उस स्थान ते भवर न आवे। अंतर हुए ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं मिरास। मंथन नाम रत एक रंग सदा बसे पार ब्रह्म कै संग। ज्यों जल में जल आए घटाना त्यों ज्योति।

संगे दुखी को नाही ठाऊ नानक संत भावे तलाए मिलाए संगा दुखिया बीच ते टूटा है संगा दुखी कते काज ना पहुंचा है संगे दुखी को ध्यान प्रभाइए संगा दुखी उजड़ पाइए संगा दुखी अंदर ते थोथा जो सास बिना मृतक की लोथा संगे दुखी की जड़ किशना है आपन बीज आपे ही खाहे संगे दुखी को अवर ना रखना हार नानक संत भावे तलाए उबार संगा

तो सेवक सा सा समारे अपने जन का बरदा ढाके अपने सेवक की सरबर राखे अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप राखे ताकि गत बिंद कोई ना राखे प्रभु के सेवक काओ को ना पहुँचे प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे जो प्रभु ने सेवा लाया नानक सो सेवक दै दस प्रगटाया निगी कीरी में कल राखे भस्म करा लस्कर कोट लाख जिसका सास ना काटते आप ताको राख देख रहा हाथ मार जतन करत पापां तिसके करत बिरथे जात मारे ना राखे अवरना कोए सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जब नानक प्रभु लाख बिडाणी बारंग बार बार प्रभु जपिय भी अमृते मंतंत्र पिया नाम रतन जन गुरमुख पाया तिस किश अवर नाही दृष्टाया नाम धन नाम

तनंदर एक प्रभ जाता गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत प्रभ आया परया तव शरणाए नानक की प्रभे नती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जा जग जन जाचा प्रभु।

है। नानक बहुरना में जाए तस्ते दूर काम को जय भरे राखन आरते आए निर्भव जबे सगल भव मिटे प्रभु कृपा ते प्राणी छुटाए।

गया जाए। नानक जा पावे ता रहे समाए, इसते हुए सो ना ही बुरा बुरा कहा हो के न कश करा। आप ला कर तू तत् ने की आपे जाने अपने जी की। आप साज धारी सब साज ओत बोत आपन संगराज, ताकि गत में कही ना जाए। दूसरो ऐसा सोजी पाए तिसका किया सब प्रवान, गुर प्रसाद नानक हो जान। जो जाने तो सदा सुखोए, आप मिलाए लय प्रभ सोए। ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया।

ओट अपराध साध संग मिठाए संत कृपाते जमते छुटाए जाके मस्तक करम रबाए साध सरनान गते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत जन आवे हर प्रभचीत जन्म मरण ताका दुख निवार दुलाभ दे तत्काल उधार निर्मल शोभा अमरता की बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिनसे भय भरम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते ऊजता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी सब ते

परवाहु साचा साहिब साच नाय पाख्या पाव पार आखै मंगै देह देह दात करे दातार फेर के अगे रखिए जिस दिसै दरबार मोहा के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार

सुनयाय सर्वर्मांद सुनयाय मुख साला हनुमंद सुनयाय जोग जुगत तन भेद सुनयाय सात सिमरत वेद

मन कोय, मन सुरत होवे मन बुद्ध, मन सगल पवन की शुद्ध, मन मोह चोटा ना खाए, मन जम के साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, देखो मन जाने मन कोय, मन भार्ग ठाग न पाए, मन पास्यों पर गुट जाए, मन मागु ना चले पंथ, मन धर्म से ती संबंध,

वार जो तुद पाव साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार

जो तद भाव साई परिकार तू सदा सलामत निरंकार भरियै हाथ पैर तन देह पानी धोते तो उतर सुखे मूत पलीति कपड़ होए दे साबून लइए होत होए

है, पाताला पाताल लख आगासायांगास ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहन कुवात सहस अठारह कहन कते बासलो एक धात लेखा होय ता लिखी है लेख है होय विनाश।

पारिए अमोल भंडार अमोल आव है अमोल लै जाहे अमोल पाए अमोला समाहे अमोल धर्म अमोल दीवान अमोल तुल अमोल प्रवान अमोल बखशीस अमोल निशान अमोल करम अमोल फरमान अमुलो अमोल आख्या ना जाए आख आख रह लेवलाए आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़े करे बखियान आखे ब्रह्म आखे इंद आखे गोपी दय गोविंद आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे केते कीते बुद्ध आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मुंजन सेव केते आखे आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे केते कीते होर करेह ता आख न सकह केई के जेवड भावे तेवड होए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोल विंगाड़ ता लिखी है सिर गावारा गावार सो दर के हा सो कर के हा जित बह सर्ब संभाले वाजे नाद अनेक संखा के ते वामन हारे केते रांग परि सिंह कहियन केते गावन हारे गावे तुहनो पौन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावे चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावे इंद इदासन बैठे देवत्या अंदर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुर गा मछ पयाले

एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सो एका वार कर कर वेखे सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी बोला।

जात है, जन्म है, बरन है, पूत है, परन है, गांज है, पांज है, चूज है, चांज है, अमीक है, रफीक है, अतंद है, बंद है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अलाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, नरसिंह है, निर्लाम है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगा है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रयात छंद, नमो सर्व माने समस्ति निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गाणे, नमो सर्व पहुणे, अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे, नमो पहान पहाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्र, नमो पहान पहाने,

एक मुहूर्त नेक दर्शन कीन रूपे अनेक खेल खेल अखेल खेल रंत को फिर एक देव पेव न जान ही जेह वेद और कतेव रूप रंग न जात पास जान ही कह जेव तात मात न जात जाकर जन मरण विहीन चक्र बकर फिरे चतर चाक मान ही पुरतीन लोग चाव दे के बिख है जग जाप जेह जाप आद देव नाद मुहूर्त थाप्यो सब जेह थाप

त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी त्रिभंग त्रिवादे गंजे गादे सुभंग सर्वभागे सो सर्वानुरागे त्रिभुक्त स्वरूप है छेद है अछूत है के नरकंग परनास है पृथ्वी और प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है बेपुक्त स्वरूप है परजुगत अनूप है निरुक्त सदा है बेपुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है परजुगत अनूप है।

अजात हैं, अजाद हैं, चर पर शांत वै प्रसाद, सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हरता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं कर्मं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जीवता सर्वं मुक्ता रसावल शांत वै प्रसाद। नमो नर्कनासे सदैवं प्रकाशेन अंगं स्वरूपे अपंगं पिभूते प्रमातं प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्वाद विभूते अनंगी न मे त्रिपंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोतरै न पुत्रै न सत्रै न मित्रै न तातै न मातै न जातै न पाते निरसाकं श्री कह मितो मी कह दैवं प्रवाहे अजय हैं अजा हैं भगवती शांत वै प्रसाद। के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमें सल सलाम हैं समह तल कलाम हैं के सैब दिमाग हैं के हुसनल चराग हैं के कामल करीम हैं के राज करहीम हैं के रोजी देहांद हैं के राज करहिंद हैं करीमल कमाल हैं के हुसनल जमाल हैं।

प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मदाम अणसिज अंग असने अपंग उपमा अपार गत में ते उदार जल थल अमांड देश वैसे अपांड।

बेसुर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है।

प्रजापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्मवास है, जास के जास है, प्रजांग प्रयात।

लटकायो। काहू लख्यो हर वाची दिशा में, काहू छा को सिंह निवायो। कौ बतानक पूजित है पास, कौ मृतानक पूजन तायो।

सिंगरी यह पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह पे आशा तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याऊ जो बर चाह सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप वास दे मुझे उभरी है मरण काल का त्रास निवरी है पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अह तो जिजू करे अहो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बांध दुह जन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा भवतरा काल पाए शिव जू अवतरा

जाए, जिस दा जीओ तिस मिल रहे, हर वसे मन आए, हर आप मुल्क है, भागत ना के नानका जिन हर पल्ले पाए। हर रास मेरी मन मंजारा, हर रास मेरी मन मंजारा, सतगुर ते रास जानी,

आया। गुर प्रसादी बुझा जा वेखा हर एक है हर बिरिया वरन कोई कहे नानक हे नेत्रां से सतगुरु मिले आए दिव दृष्ट होई ए श्रवण हो मेरे हो साचै सुन नैनो पठाए साचै सुन नैनो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस माणी सच अलख विडा।

सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल वेसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सती बाणी, संत साजन पह

0: खंड खंड कर भोजन कीनो तौ ना बिसरियो पानी। जिवें हजूर मच्छी पानी नू प्रीत करदी है ना, मैं उस तरह करना। कहिंदे करदी किस तरह है? कहिंदे जिंदा हुंदी भी करदी है, मर के भी करदी है। जदों तक जिंदा है वह पानी ही उहदे जीवन का आधार है। कोई पानी चो बाहर कढ दे तड़फ तड़फ के मर जाती है, पर जे बाहर निकली हुई नू कोई खा लवे ते रात नू उठ उठ के पानी पींदा, लोकी पुछदे तेनू की होया है, बड़ा पानी मंगना है। वो कहिंदा मैं नहीं मंगदा, जिहड़ी अंदर गई वह मंगदी है, वह मर के भी पानी नू प्रीत कर रही है। मेरा तुहाडे नाल इस तरह का प्यार है, जिस तरह मच्छी का पानी नाल जिउंदिआं भी ते मरनो उपरंत भी। मीन मच्छी पकड़ के फांक्यो अर काट्यो, उहनू वह जिस तरह छिलदे बनांदे ने, रांद की वह बहु बाणी, फिर उन्हों चंगी तरह रिन्या भांडे च पा के, उदू मगरों फिर मैं खंड खंड टुकड़े टुकड़े करके अपने दंदा की चक्की चला के उहदे टुकड़े टुकड़े किते, उन्हों लीकर जिहा बना लिया ते अंदर निकल गया, अंदर चली गई। ईवन तऊ ना बिसरियो पानी, इन्नी प्रीत है। पुछया जी यह प्रीत सानू भी कितों मिल सकती है? लोगों ने पुछया, कह लगे नहीं, आपन बापै नहीं किसी को। ये कोई एग्रीकल्चर जमीन नहीं पंजाब दे विच, भाई बंदा गुजर गया तो पटवारी आटोमैटिक बच्चों के नाम से इंतकाल से गिरदौरियां कर देगा। ये रब किसी की जद्दी जायदाद नहीं है। जे इस तरह की गल हुंदी ते अमीरां ने गरीबां नू रब दे नेड़े ने सी फटकण देना, पर उत्थे जदों किसी ने प्राप्त किया पहला गरीब ने किया, जदों बख्शिश होई गरीब नवाज गुसाइया मेरा माथे छत्र तरे। किते सारे गुरु ग्रंथ साहब च एक बार भी अमीर नवाज नहीं लिखिया, जिथे लिखिया गरीब नवाज ही लिखिया। जिन्ना गरीब हो जाएगा बैरूनी तौर ते अंदरूनी तौर ते उहना उहदे नजदीक हो जाएगा, जिन्ना वड्डा बन बन बहवेगा उहना उहदे तो दूर हुंदा जाएगा। आपन बापै नहीं किसी को, पावन को हर राजा। हरी परमात्मा भावना दे अधीन है, वह किसी दे प्यो दी जद्दी जायदाद नहीं है। मोह पटल सब जगत व्याप्यो, भगत नहीं संतापा। मोह पटल पप्पा टैंका लल्ला पटल परदा जिया, एक ते हुंदा संगत जी परदा, एक शब्द उर्दू दा ਉਹਨੂੰ ਚਿਲਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਚਿਲਮਨ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਚਿਲਮਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਚ ਚਿਲਮਨ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਵੀ ਆਭਾਸ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। पटल मैंने परदा, जदों गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कहिंदे ना भी केव कूड़े टुटै पाल, कूड़े पाल दा मतलब है भी पाल है ही नहीं, दीवार है ही नहीं, असी एवें बनाई हुई है भी मैं वखरा वा वाहगुरु वखरा, साडी बनाई हुई है। कूड़ दी पाल उहनूं तां कहिंदे, उह साडी साडे अनकॉन्सियस माइंड जिन्हू कहें अचेत मन कहें उन्हें बनाई है, वास्तव च है ही नहीं। अच्छा होर सतगुरु ने साडे ते तरस किया सौखे ढंग नाल समझा ली, कहन लगे पंभीरी के पात पार दो बिन पेखे दोरायो। जिवें पंभीरी दे तितली दे खंभ पारदर्शक जे प्याज की झिली वर्गे हुंदे ने, इस तरह मोह पटल सब जगत व्याप्यो भगत नहीं संतापा। कौरवदास भगत एक बाढ़ी ढाडी आला टड्डा, भगत एक बाढ़ी, अब ए का स्यों कही है, जा कारण हम तुम आराधे सो दुख अजू सही है। कह लगे मैं अपने अंदर हूं भगती नू वधा लिया। कौरवदास भगत एक बाढ़ी, अब ए का स्यों कही है, हूं मैं किसी नू लामा देन जोगा नहीं भी जिस नाम नूं जप के मोह तो छुटकारा पाई दा उह ते मेरा होया ही नहीं गा। कहन लगे मैं हुण अलामा देण जोगा भी नहीं क्योंकि परमात्मा ने मेरा कार्ज सवार दिता। जाकर नाम तुम्हारा दे जिस कारण वकारा तो खलासी प्राप्त करने ली मैं तेनू जपदा सा सो दुख अजू सही है दुख मैं अजे भी सह रहा मैं ते गल कह ही नहीं सकता क्योंकि मेनू ते तुसी उना तो बचा लिया। अज भी गुरु नानक साहब यही कह रहे ने ऐसा नाम निरंजन देओ हौ जाचक तू अलख अपेओ। जिस तरह तू आप है निरंजन हे वाहगुरु जी तेरा नाम भी उस प्रकार निरंजन ही है। सो इस प्रकार बिलावल महला पहला बिलावल राग विच गुरु नानक साहब सचे पातशाह दा शब्द गुरु ग्रंथ साहब दे पावन अंग 795-796 आपे शब्द आपे निशान शब्द दा भाव स्पष्ट है निशान राहदारी। जिस तरह साध संगत जी किसे ट्रेन विच किसे ट्रक विच कोई समान लोड कीता जांदा है ते उदा मैमो बनदा है ये केड़ी कंपनी भेज रही है किथे भेज रही है किन्ना समान है इत्यादि। जां किसे ने एक मुल्क तो दूजे मुल्क जाना है उदे कोल कोई डाकूमेंट हुंदे ने भी भाई तू इस मुल्क च क्यों आया है तू किथे जाके रहना है तेरा विजिट करन दा परपज इत्यादि की है। ता किसे संस्था ने किसे फ्रेंड ने किसे रैलेटिव ने ओनू एक डाकूमेंट भेजा हुंदा जिन्हों असी स्पोंसर जां राहदारी कह देने वो जिहड़े उत्थे इमीग्रेशन वालिया ने बैरियर लाए हुंदे ने उत्थे वो राहदारी उहदी मदद करदी है। राहदारी जिवें थानेदारी सेवादारी इस तरह राहदारी जिहड़ी राह विच इमदाद करे जिहड़ी राह रोकण तो लोकां नूं मना करे। इस प्रकार निशान दा अर्थ है राहदारी। आप ही अकाल पुरख साडे वास्ते राहदारी बनदा है आपे सुरता आपे जान आप ही ओ बोलदा भी है आप ही ओ सुनदा भी है आप ही साडे अंदर दियां सारियां गल्लां नूं जानदा भी है आपे कर कर वेखै तान ए सारी सृष्टि नूं पैदा करके आप ही देखदा है। भाव देखदा तो मीन्स इस दी संभाल भी करदा है। तू दाता नाम परवान ते सा जीवां नूं तुसी सारियां दातां देण वाले हो और जिहड़ा तुहाडा नाम जपदा है ओह तुहाडी दृष्टि विच परवान चढ़ जांदा है। माया मोह तरकटी नार पूंडी कामण कामण यार ये जिहड़ा माया दा मोह है ये साध संगत इस प्रकार जो है त्रकटी नार वर्गा है। सो पूंडी कामण ओ कामण इस्त्री जिसनू पूंडी ओ हरियाणवी बोली च बुरी नू कहिंदे ने ते कामण आर तो मुराद है टूने हार। राज रूप झूठा दिन चार ए दुनिया दा जिहड़ा साध संगत राज है ये जिहड़ा रूप प्राप्त हुंदा है सुंदरता जिन्हों कह देने आ ये झूठा तो मुराद है भी नाशवंत है ना तो हमेशा मनुख कोल राज रहिंदा है ना ही मनुख हमेशा जवान रहिंदा है। सुंदर ते खिमा करना उदों तक ही व्यक्ति लगदा जदों तक जवान हुंदा है भावें वह इस्त्री होवे भावें पुरश होवे उदों मगरों जिन्ने मर्जी जतन करिए हजूर कहिंदे ने जर वेश करेंदी आई है भेस बदल बदल के बुढ़ापा आउंदा है हरेक फल पक के मिठा हुंदा है उहदी कीमत वधदी है सत्कार वधदा है पर मनुख एक इस तरह का फल है जिवें जिवें पकदा है इहदी कदर घटदी है इहदे कोलों भीड़ नदारद होनी शुरू हो जाती है। महाराज कहिंदे ने इह राज रूप झूठा दिन चार चार दे रारे नूं शिहारी गिनती दा चार ए चार कु दिना दा प्रौना है। तन जोबन अर फुलड़ा नाठियड़े दिन चार पबन केरे पत ज्यों ढल ढोल जुम्मन हार रंग मान लै प्यारिया जा जोबन नाओ हुला दिन थोड़े थके पया पराणा चोला। नाम मिले चानन अंधियार जिवें हनेरे विच रोशनी हनेरे दे दोष नूं दूर कर देंदी है इस प्रकार तेरा नाम तेरी सिफ सलाह दी बाणी गुरबाणी इस जग में चानन कर्म वसै मन आए उस अनेरे नू दूर कर दिए। चख छोड़ी सहसा नहीं कोए ਬਾਪ ਦਿਸੈ ਵੇ ਜਾਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆਚਰਣ ਕਰਨ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਦਿਸੈ ਵੇਜਾਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੇਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆਚਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਿਕਟ ਬੁੱਝੈ ਸੋ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰੈ, ਬਿਖ ਸੰਚੈ ਨਿਤ ਡਰਤਾ ਫਿਰੈ, ਹੈ ਨਿਕਟੈ ਅਰ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਬੁੱਝੈ ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ, ਨੇਰੇ ਨੇਰੇ ਸਭ ਕੋਈ ਕਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਭੇਦ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਲਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬਚਨ ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਚਨ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕੌਰ ਵਿਦਾਸ ਹੱਥ ਪੈ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਮੰਨਦਾ ਸਮਝਦਾ, ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ, ਨਿਕਟ ਬੁੱਝੈ ਸੋ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਆਚਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਖ ਸੰਚੈ ਨਿਤ ਡਰਤਾ ਫਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਗਲਤ ਆਚਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਖ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਲਟੀ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜੰਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਗਏ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਟ੍ਰੇਨ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਰੂਮ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਸਾ ਹੈ ਵੀ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਡਰੈ ਜੋ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਧਰਮੀ ਵਿਕਸੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆਚਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆਚਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਿਕਟ ਬੁੱਝੈ ਸੋ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰੈ, ਬਿਖ ਸੰਚੈ ਨਿਤ ਡਰਤਾ ਫਿਰੈ, ਹੈ ਨਿਕਟੈ ਅਰ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਬੁੱਝੈ ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਕਹੈ, ਆਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਭੇਦ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਦਿਸੈ ਵੇਜਾਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲੈ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੇਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤ ਆਚਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਉਂ ਮੁਕਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਏਕੈ ਕਹੋ ਨਾਹੀ ਭਉ ਕੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਸੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਰਤਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਮੂਹੇ ਮਨ, ਮਨ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਫੁਰਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਇਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਟਾਕਮ ਕੂੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚਿੰਦੜੀਆਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁਰਨੇ ਰੂਪੀ ਕੂੰਜਾਂ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀ, ਇਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆਪ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। मन नूं आरे लाना पएगा भी चल सुखमणी कर लै बाणी पढ़ लै सेवा कर लै ए ध्याने लग जाए इहदे अंदर जिहड़ी ओवर थिंकिंग है वह गुरबाणी आले पासे लग जाए वह वाहिगुरु गुरमंत्र आले पासे लग जाए। जीवत मरै मरै फुन जीवै ऐसे सुन समाया अंजन माहे निरंजन रहीए बौर ना पौजल पाया। फुरनिया वालों ज्यौदे जी मर जाए चंगी तरह मर जाए ठाक रहे मन सचै धारिया इस प्रकार फिर वो अपने मन नू रोक के रखदा है सदा थिर काल पुरख नू मन विच धारण करदा है। अवर ना सूझै गुर को वारिया नानक नाम रते निस्तारिया। फिर ओनू ये समझ आ जाती है बे गुरु वाले बन के जेड़ियां जेड़ियां जीव इस्त्रियां नाम रंग विच रंगियां जांदियां ने वो इस संसार समुद्र नू सही लाई पार कर लैंदियां ने। पुलां गलतियां दी खिमा बख्शनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। रामकली महला तीजा आनंद को अंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सह सेती मन वजियां वधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईयां शब्दों तां गावो हरी केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा काज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस दे सो पावे सदा सिफ सलाह तेरी ना मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आय वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटोह जिस दियां ए वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत उद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तो जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तैं सुख हुआ तित करि आनंद वाजे आनंद सुनो वडभागी ओ सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहया भार पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे आन हद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: तू ठाकुर तुम पहर दास।

अविनाशी दीयन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण दान भगतन कौ बरतन बिरला पावे कोई।

0: संत के दुखी को दर के मिले सजाए,
1: संत का दुखी सदा सहराइए,
0: संत के दुखी ना मरे ना जगाइए,
1: संत के दुखी की पूजे ना आसा,
0: संत के दुखी उठ चले नरासा,
1: संत के दुख ना तुझसे कोई,
0: जैसा पावे तैसा कोई होए,
1: वे अकृत ना मिटे कोई,
0: नानक जाने सच्चा सोए,
1: सब कर किसके हो करने हार,
0: सदा सदा किसको

0: चौथे पद में सो जंगत पाए।
1: रूप सत जाका सत स्थान,
0: पुरख सत केवल प्रधान,
1: करतूत सत सत जाति माणी,
0: सत पुरख समय समाणी,
1: सत कर्म जाति रचना सत,
0: मूल सत सत उत्पत्त,
1: सत करणी निर्मल निर्मली,
0: जिसे बजाए तिसे सब फली,
1: सत नाम प्रभु का सुखदाई,
0: विश्वास सत नानक गुरते।

0: सुपावे सो भरतिया जिनम जियात से आया समाद
1: के रंग राच जन रहे
0: गुर के बचन पदार्थ रहे
1: दुख काटन हार
0: जाके संग करे संसार
1: जन का सेवक सो बड़ पागी।

0: अपने सेवक की सर पर रखे,
1: अपने दास को देव डाई,
0: अपने सेवक को नाम जपाई,
1: अपने सेवक की आप मत रखे,
0: ताकि गत मित कोई न लखे,
1: प्रभु के सेवक को न पहुँचे,
0: प्रभु के सेवक ऊँचे ऊँचे,
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया,
0: नानक सो सेवक।

0: नानक तुमरी शरण पर भगवान
1: शरण बैकुंठ मुक्त मोख पाए
0: एक निम कर के गुण गाए
1: अंतराज भोग बढ़ियाई
0: हर के नाम की कथा मन पाई
1: भोजन का

0: जन्म रंको का विनाशन
1: जब पूरन करता प्रभ सोए
0: तब जम की त्रास को किस होए
1: जब अवगत गोचर प्रभ एका
0: तब चित्र गुप्त कुछ पूछत लेखा
1: जब नाथ निरंजन गोचर गादे
0: तब कौन छूटे कौन बंद।

0: सकल महेश करुण काता तिनके दोष दुख है मरे
1: जवन पग परे तिहारे
0: तिनके तुम संकट सब तारे
1: कल कोई कबार में आए हैं
0: ताके काल नट ने
1: हुए कहाँ सब काला
0: दोष।

पांच तत् को तन रचियो जानो चतुर सुजान जेत उपजियो नानका लीन ताहे मैं मानऊ।

मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजो सो बिनस है परो आज कै काल, नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। दोहरा

तरस पिया मेह रहमत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरिया तरस पिया मेह रहमत होई सतगुर।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलापे अठो नंदन प्रथम राग भैरव करही पंच राग नि संग चरही प्रथम भैरवी बुलावली पुनिया की गावे बंगली पुनस लेखी की पई बारी ए भैरों की पांचो नारी पंचम अर्घ दुसाग सुनावी बंगाल मद माधव गाव है ललत बलावल गाव ही अपनी अपनी भांत अष्ट पुत्र भैरव के गावे गायन पात्र

मिलावही। तेलंगी देव करी आई, बसंती संदूर सुहाई, सरसिहरी लै भर जाय, संगलाई पांचो आर जाय। सुरमानंद भास कर आए, चंद्र भिमंगलन सुहाए, सरस बाणे वाहे बनोदा, गावे सरस बसंत कमोदा। अहिट पुत्र मैं कहे।

मत मैं पिछे कोई रोवसी सो मैं मूल ना पाया। मित पैजा मित बिगसा जिस मित की पैज पावे। तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पहनावे। सतगुरु पर ताकु हुंदे बहराज आप टिकाया सब। सिख बंधप पुत भाई रामदास पैरी पाया अंते।